गुरु दे दर ते बैठे अरदास करनी है। असी कलयुगी जीव हां, हर श्वास बुलन हार हां। हे निरंकार, जेड़ी भी गल करदे हां ना, उस नाल कूड दी लब लगी होंदी है, इसलिए असी गुनाहगार हां। मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, तेरी बख्शिश होवे रहमत होवे ता इन्हां इन्हां पंजां तो छुटकारा मिल सकदा है, पंजां ते जीत पाई जा सकदी है। ये पंज कौन हन जो इस गरीब दे शुभ कर्मां नूं शुभ कम्मां तो रोकदे हन, शुभ कम्मां नूं नष्ट कर देंदे हन? ओ हन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इसलिए गुरु अर्जन देव पातशाह जी अरदास करदे हन, हे निरंकार, पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखनहारे। ऐसे कठिन संसार विचों कोई किवें तर सकदा है जितने तक तेरी कृपा ना होवे, तेरी रहमत ना होवे। जे तू चाहे तो की नहीं करवा सकता, जे तू चाहे तो बख्शन विच कोई देरी लगेगी, इसलिए साढ़े ते कृपा।

प्राप्ति हो जावे तां फिर ओ गुरु इस लोक विच भी सहायता करदा है, परलोक विच भी सहायता करदा है। जिहड़ा गुरु इस लोक विच सहायता नहीं कर सकदा, परलोक विच क्या करेगा? उहदी तां पहुंच उत्थों तक है, तिथे तू समरथ, जिथे कोई ना है।

मालक की नौकरी छड़ के जा सकता। नौकर ते मालक छड़ के जा सकता है, पर जिड़ा गुलाम है, गुलाम कभी अपने मालक नहीं।

कुछ निंदा चुगली करने वाले भी खड़े, बादशाह के दरबारी भी खड़े। कबीर साहब जा पहुंचे, बादशाह ने देखा और बादशाह नु कबीर

की संगत रहो, जौ की भूसी खाओ। जौ दी तोड़ी थोड़ा कम कटदा है, कट जे गरीबी कट ले, जौ दी तोड़ी खा के गुजारा कर ले, पर नाम जपण वाले दी संगत ना छड़। कबीर साधु की संगत रहो, जौ

नानक तू लेना तू है गुर अमर तू बिचारिया गुर डिठा तमन सदार रामदास।

को आस जगत गुरु की पार्श पेट पर्श करो रामदास गुरु हर सत की ओ समरथ गुर सिर हाथ तरे ओ कसमल जाय हर हनन कसमल जा हर हनन।

गुरु अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पत अग्नि देखत गत चरण कमल दास चरण कमल दास सब विद्मान्यो मन तभी पयो प्रसन्न गुरु जोग तख्त दियन गुरु रामदास नाये रामदास सरी नाये रामदास नाये रामदास सरी दस सरी दस दस नाये रामदास सरी नाये रामदास नाये रामदास सरी हम अब गुण बर

वंश रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं। रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं। सतगुर सेव अलखगत जाकी।

कर कर पाप दर्ब किया, वर्तन कहता ही कर कर पाप, पाप बुरा पापी को प्यारा, कर कर पाप दर्ब किया। तीन भवन की लक्ष्मी जोरी, तीन भवन की लक्ष्मी जोरी, कर कर पाप दर्ब किया, वर्तन